0: आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनी सकाळचे 6 वाजतात. थोड्याच वेळात ऐकूया हिंदीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून. आम्ही सहक्षेपित करणार आहोत.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा. इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा. IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार. ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है. इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है. श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है.
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य. हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए.
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में सम्पन्न हो गई है. महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा. ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है. वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी. इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है. भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं. इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है. 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया. बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया. आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है. इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक. वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है. चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा. वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा. मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सतारीचे बोल असोत
1: की मंजुळ बासरी,
0: शततारांची संतूर असो
1: की मंगल सनई,

0: या समूह गीताबरोबरच भावधारा हा सुगम संगीताचा कार्यक्रम इथे संपला. हा कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. श्रोते हो, सकाळी 8:40 आपण ऐकू शकाल भारतीय वायुसेना दिनानिमित्त समन्वित कार्यक्रम आसमंत रक्षक भारतीय वायुसेना. त्यापूर्वी सकाळी 8 हिंदी बातमीपत्र, 8:15 इंग्रजी बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल, तसंच 8:30 राष्ट्रीय मराठी बातम्या पुणे केंद्रावरून प्रसारित होतील.
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी. भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन. केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना. और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा. इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार. इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा. इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है.
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी. यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. साथ ही

0: सौ से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो

0: धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोची के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
1: कोची भारत का पहला शहर है जहाँ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशन्ड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबिदान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबिदान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
3: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
4: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
5: न भाई, न बहन, न बीवी, न बेटा,
6: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
4: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
4: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
8: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
4: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
9: रह

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनोज शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनोज और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57 GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and Dia Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. More from our correspondent.
3: India Mobile Congress 2026 has brought together global technology leaders, policy makers, industry experts, startups, investors, and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कितने चिल्लाते रहे चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। यह कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। अभिनेता नाना पाटेकर को फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया।

0: इसमें दूर संचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। चार दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं।

0: सकता और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेतृत्व निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की

0: जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
4: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
5: जोधपुर जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
6: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
7: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ

0: वो देखें कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला, और काफी चीजें देख को हमको यही लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
3: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
4: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
5: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
4: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: प्रसार भारतीच्या वेब्स, OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजलेले आहेत। आता नादब्रह्म कार्यक्रमात झिशान खान यांनी गायलेला राग मदमाज सारंग आपल्याला ऐकवत आहोत। विलंबित ख्यालाची बंदिश झुमरा तालात आहे, द्रुतबंदिश झप तालात आहे। त्यांना तबल्याची साथ अजित पाठक यांनी आणि हार्मोनियमची साथ जयंत फडके यांनी केलेली आहे। ऐकूया झिशान खान यांनी गायलेला राग मदमाज सारंग।

0: क्योंकि इस दौरान मैंने ये जाना कि अगर आपको सक्सेस पाना है किसी चीज़ में तो दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक तो उस सब्जेक्ट का नॉलेज, सही नॉलेज, और दूसरा उस नॉलेज को आप प्रेजेंट कर पाए ताकि उससे वो बेनिफिट में ला सके, ये ज़रूरी है। तो मैंने ये समझा था कि फाइनेंस वो नॉलेज है जो मैं सीखना चाहती हूँ, बट मार्केटिंग वो सब्जेक्ट है जो मुझे एक्चुअली मदद करेगा मेरे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये अनुभव से मैं यही कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, और
1: ओके,
0: ये MBA डेफिनेटली सिखाता
1: सो
0: है।
1: सो दैट यू हैव टू एक्सप्लोर.
0: एक्सप्लोर, एग्जैक्टली।
1: या कमोडिटी मार्केट में काम करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग आपकी क्या थी, एंड सेकेंड थिंग कि रिसर्च एनालिस्ट के रोल में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी?
0: जैसे कि कहा जाता है कि बुद्धि के दाता गणपति है और विद्या के दाता सरस्वती माँ है। जब ये दोनों साथ हो तो लक्ष्मी का आगमन होता ही होता है। उसी तरीके से मैंने ये समझा था व्हाइल आई एम टेकिंग माई ट्रेनिंग ऑल्सो कि नॉलेज एक्विजिशन सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है किसी भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए, आगे काम करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए। और इसीलिए मैंने ये जाना है कि एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको, आपके पास एक सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप उस पोजीशन पे आएंगे कि आप उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकेंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए बट दूसरों के लिए, कि वो बेनिफिट लेके उससे कुछ गेन कर सके। तो ये एक चीज़ है जो मैं मानती हूँ रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब मैं रिसर्च एनालिस्ट के रोल में थी तो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, हमारा काम था एक डीप स्टडी रखना, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कमोडिटीज़ मार्केट को अंडरस्टैंड करना, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स बनाना, हमारे जो मेजर कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं, HNI क्लाइंट्स हैं, एंड इवन एट अ लार्जर ग्लोबल लेवल, उन रिपोर्ट्स को पुट अप करना विथ मैगजीन्स लाइक बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन एंड मेजर अदर एसोसिएशन रिगार्डिंग व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली इन द इकोनॉमी एंड हाउ डू वी सी द प्राइसेस कमिंग अप इन द कमिंग टाइम्स।
1: फाइनेंस से टीचिंग की तरफ आने का डिसीजन आपने कैसे लिया?
0: एवरीथिंग हैज़ इट्स ब्यूटी एंड मेच्योरिटी, सेम लाइज विथ नॉलेज एंड स्किल्स। सो एक समय होता है लाइफ में जब आप सीखते हैं, हालांकि पूरी लाइफ ही आपको सीखते रहना चाहिए, बट डेफिनेटली एक समय आता है कि आपको उसको यूटिलाइज करते आना चाहिए। और मैंने जो भी अपने लर्निंग फेज में सीखा था, मुझे ऐसे लगा कि अब ये नॉलेज जो मैंने गेन किया है डेफिनेटली मैं शेयर कर सकती हूँ, किसी और के डेवलपमेंट में भी मदद कर सकता है। ये एकमात्र वो थॉट था जिस कारण मैंने ये सोचा कि हमें टीचिंग में डेफिनेटली जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस हमें मिला था शायद सही वक्त पर, जो मदद कर सका, अब उनको देने की बारी आई है। और इसमें क्या और बेटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि नॉलेज को अगर कम्युनिकेशन का बल मिल जाए तो उससे खूबसूरत और सक्सेसफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन बच्चों में सिखा दे तो वो डेफिनेटली अपने लाइफ में जो शायद वो चाहते हैं वो ज़रूर से पा सकते हैं और उसे अचीव करने की क्लैरिटी मिल जाती है।
1: अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है एंड ही इज़ अ बिगनर, क्या गाइडेंस आपकी तरफ से उन लोगों को रहेगा?
0: एज द वर्ड पब्लिक स्पीकिंग सेज, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पब्लिक यू नो। सो आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स दैट वेन यू वॉन्ट टू एक्सेल इन पब्लिक स्पीकिंग, फर्स्ट ट्राई टू एक्सेल विद इन वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव। एंड इसका एक बहुत अच्छा सिंपल सा एक्सरसाइज है जो मैं सब बच्चों को करवाती हूँ और चाहती हूँ कि जो जहाँ पे भी हो अगर वो करे तो खुद ही धीरे धीरे देखेंगे कि इवेंचुअली वो डिफरेंस आता है, और वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। आप एक्चुअली में न्यूज़पेपर को लीजिए या कोई भी एक अच्छी मैगजीन को लीजिए जो, और उसे आप अकेले में ज़ोर ज़ोर से रीड करना शुरू करिए। इससे दो चीज़ होती है, एक तो आपको नॉलेज और कंटेंट मिलता है कभी भी बात करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो आपकी स्पीकिंग में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता ही है। और देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड बॉडी मेमोरी, तो अगर आप रोज़ ज़ोर से या क्लैरिटी से कोई चीज़ को पढ़ते हैं या बोलते हैं इवेंचुअली, तो आपकी बॉडी में वो टेंडेंसी डेवलप होने लगती है कि यू आर एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, बिकॉज योर बॉडी रिमाइंड्स यू दैट यू कैन स्पीक फॉर लॉन्गर आवर्स, एंड इवेंचुअली दैट हेल्प्स इन पब्लिक स्पीकिंग। सो वंस यू आर रीडिंग एवरी डे लाउड, वॉट हैपन्स इज वेन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन सो मच इन द डे फॉर 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, सो यू गेट द फ्लो वेरी इजली। सेकेंडली यू हैव द कंटेंट एंड नॉलेज, वेन बोथ कम्स टूगेदर इट बिकम्स वेरी सक्सेसफुल।
1: राइट, आपने इतने सारे फील्ड्स एक्सप्लोर की है, उस टाइम में मोबाइल कितना आप यूज़ करते थे एंड अभी का जो पीरियड है उसके हिसाब से आप गाइड कीजिए कि कितना मोबाइल यूथ्स ने यूज़ करना चाहिए।
0: इन टुडेज डे वेयर एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट AI एंड एवरीथिंग बीइंग ईजिली एक्सेसिबल, तो मुझे बस यही लगता है कि टेक्नोलॉजी कैन बी एडवांस्ड बट ओनली इन्हांस्ड व्हेन टच विथ ह्यूमैनिटी।
1: ओके,
0: सो आप मोबाइल को या फॉर दैट से किसी भी टेक्नोलॉजी को उस हद तक के अपनाएं जिस हद तक के वो आपके नॉलेज को इनक्रीज कर रही हो। बट अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में ये होता है कि किसी को अगर कुछ छोटा सा भी लेटर भी लिखना है तो वो ChatGPT पे डाल देता है और अपने ब्रेन को उस सिचुएशन में ही नहीं आने देता है कि मैं सोचूं भी कि मुझे उसमें क्या लिखना है, वो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज को इलैबोरेट कर सकते हैं इतना। तो ये कहीं ना कहीं उनके कैपेसिटी को एक्सप्लोर करने से रोक रही है। तो मेरा सजेशन यही है कि डेफिनेटली आप इसे बहुत अच्छे से अपनाइए, पर एक्सटेंट आप खुद डिसाइड करिए। जैसे कि हम छोटे बच्चों के लिए ये बोलते हैं कि इतने देर तक ही मोबाइल देखना सही है, वैसे ही कहीं ना कहीं कंटेंट किस हद तक हमने लेना है वो हमें सोचना है और कब हमने अपना बनाना चाहिए, खुद का इनपुट डालना चाहिए, बिकॉज वॉट इज़ इन योर माइंड इज़ नोवेयर इन द इंटरनेट। And right. trust me, no one can copy it, no one can create it. And once you create what you know, you are best at it.
1: Wow. आपने काफ़ी सारे HNI clients भी handle किए, तो उनके साथ बातचीत करते वक्त आपका approach कैसा रहा?
0: Honesty is the best policy. And I think ये एक अलग ही confidence देती है जब आप किसी भी client से बात कर रहे होते हैं। Specifically, अगर आप मुझसे पूछेंगे corporate या HNI के साथ कैसे communication करना है, तो मेरा यही कहना है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो लोग रहते हैं जो आपसे कई ज़्यादा experienced रहते हैं, कई ज़्यादा अनुभवी रहते हैं, कई लोगों से मिले होते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस में उस इंडस्ट्री में आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम एंड फॉर दैट से एक्चुअली यू आर नॉट फूलिंग देम योर सेल्फ। सो आप ऑनेस्टली अगर आप अपने जो भी कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं वो अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो आपको एनी वेज ले ही लेते हैं, और अगर उन्हें नहीं चाहिए तो आप चाहे कितना भी पोर्ट्रे कर ले वो नहीं हो सकता है। सो माई ओनली यू नो अप्रोच दैट आई टेल students also to follow is just be honest with whatever skill and content you have. It is itself enough and impressive to get any good work.
1: Priyanka ji, aapne throughout the journey khud ko itna motivate kaise rakha?
0: Mere life mein ek motto jo maine hamesha believe or follow kiya hai is that at the end of the day I should be able to answer my conscience that whatever I did throughout the day was right and I was true to myself. So this is something that I strongly believe in. And I believe that there is a supreme power which constantly keeps on knowing what are your desires, what you want to achieve, and primarily how much effort you are taking. So, thing that keeps me motivated is koi dekhe na dekhe, upar wale ki do aankhein hamesha dekhti hai. Agar aap honesty se apna kaam karte hai, genuinely, to aapko success aaj nahi to kal aane wale samay mein zarur milti hai, ya us cheez ka aapko jo रिवॉर्ड होना चाहिए जिस भी फॉर्म में वो ज़रूर मिलता है।
1: अगर कोई युवा आज अपने करियर पर काम शुरू करे तो ऐसी कौन सी दो या तीन चीज़ें जिन पर उन्होंने फोकस करना चाहिए?
0: प्राइमरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के डेट में बहुत नीडेड है और हमेशा रहा है वो एक प्रॉपर गाइडेंस। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में वो अचीव किया जो शायद आप आज अस्पायर कर रहे हैं, और क्या उनकी जर्नी रही। किसी प्रकार से अगर हम उनसे गाइडेंस ले सके या उनके कोई थॉट्स को समझ के प्रैक्टिस में ला सके तो वो ज़रूर करना चाहिए। और सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हार्डवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि चैलेंजेस तो आज इस एज में किसी और बात के रहेंगे, कल जब आप जहाँ एस्पायर करना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो कुछ और रहेंगे। बट आई थिंक हार्डवर्क एक ऐसी की है जो आपको कंसिस्टेंट रखती है, और If you are consistent in your hard work, then eventually you can win over even talent over a period of time. So that is, I think, must followed है ये।
1: प्रियंका जी, हम देखते हैं कि corporate communication में students सबसे ज़्यादा struggle करते हैं, तो वो struggles क्या है और उन्हें surpass करने के लिए क्या remedies हैं?
0: Youngsters are talent of pool. उनके पास बहुत talent होता है, but due to our स्टडी करिकुलम हमारे बच्चों को बचपन से वो अपॉर्चुनिटी नहीं जाती है कि आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें. एंड इवेंचुअली जब भी वो अपने क्रिएटिविटी और आइडिया को लेके आते हैं तो वो जानते भी हैं शायद कि ये एक चीज़ है जो बहुत डिफरेंस बना सकती है सक्सेस

0: फुल हो सकती है, पर पहले मौका नहीं मिलने के कारण वो कॉन्फिडेंस से अप्रोच नहीं कर पाते और यहीं जाके कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक जो ब्यूटी है कॉर्पोरेट्स कम्युनिकेशन की वो ये है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रॉनेस है, एक्चुअल कंटेंट है। जहाँ कमी है वो ये है कि वो प्लेटफॉर्म्स एट एन अर्ली एज नहीं मिले और बार बार नहीं मिले कि वो उसे कैसे प्रेजेंट करे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट करे। तो रेमेडी यही रहेंगी कि बच्चों को जहाँ भी मौका मिले, चाहे वो स्कूल्स में ही क्यों ना हो या अर्ली कॉलेज डेज और फॉर दैट से ग्रेजुएशन, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलना चाहिए जहाँ वो एटलीस्ट अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सके, ताकि वो उनको मदद करेगा, उनसे जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं या जो उसे एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सके उन्हें कन्विंस करने में।
1: नाउ वन मंत्र यू वुड लाइक टू शेयर विद द यंगस्टर्स, व्हाट वुड इट बी?
0: दुनिया क्या सोचेंगी ये कभी मत सोचो। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, समाज के नज़रिए को सोचने में हम कई बार लाइफ के डेयरिंग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं और इवेंचुअली यही सीक्रेट टू सक्सेस होता है। तो यंगस्टर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं जिसके लिए आप कन्विंस्ड हैं, तो किसी और के थॉट को भी अपना सेकंड थॉट मत बनाइए, उस पर अमल करिए, लाइफ में रिस्क लीजिए। ब्यूटी ऑफ रिस्क इज़ डेफिनेटली रिवॉर्डिंग इफ़ टेकन राइटली। जस्ट टेक द रिस्क एंड टेक द डिसीजंस।
1: श्रोते हो, आजच्या संवादातून फिनान्स, कमोडिटी मार्केट, रिसर्च, टीचिंग, एंटरप्रेन्योरशिप आणि पब्लिक स्पीकिंग अशा विविध क्षेत्रांचा अनुभव आपण जाणून घेतला। आपल्या अनुभवातून अनेक महत्त्वाच्या आणि प्रॅक्टिकल गोष्टी आमच्या श्रोतांपर्यंत पोहोचल्या। प्रियंकाजी, आपला वेळ दिल्याबद्दल आणि इतक्या सहजतेने आपले अनुभव शेअर केल्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार।
0: थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच।
1: मित्रांनो, आत्ताच आपण ऐकलेल्या संवादातून एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते, ती म्हणजे शिकत राहणं, प्रयत्न करत राहणं आणि स्वतःवरचा विश्वास कायम ठेवणं। याच सकारात्मक विचारांना सुरांची साथ देणारं एक सुंदर प्रेरणादायी गीत प्रस्तुत आहे तुमच्यासाठी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज

0: के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The GST Council has removed power of arrest of tax officers and has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The decision was taken during the 57th meeting of the Council in New Delhi today. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or fails behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing media following the meeting this evening, Finance Minister Nirmala Sitharaman said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi said, stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud, called for the development of a global framework to tackle the threat.
3: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai ye bhi hum dekh rahe hain, isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkare, technology companies, telecom operators, sabhi ko इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं GSMA और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, the promise of an artificial intelligence today, Mr. Vaishnav said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cyber security, benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Vishakhapatnam on the 12th and 13th of next month. Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, today called upon young Indians to harness their skills, creativity and innovative potential to contribute to the vision of Vikasit Bharat by 2047.

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। 5G सेवया देशस्य सर्वे जनपदाः संयोजिताः। अङ्कीयशिक्षया 25 कोटि छात्राणाम् उज्ज्वल भविष्यं सुनिश्चीयते इति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देशे AI इत्यस्य नियंत्रणाय आगामी मासे परामर्शपत्रं प्रस्तोष्यते इति सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः। औषध विपणने पारदर्शितायै महती घोषणा। अनैतिक प्रचाराणां नियंत्रणार्थं विशेष समितेः रचनायै सर्वोच्च न्यायालयस्य समादेशः। साहित्य जगत्सु एन कार्सन महोदयायाः महती विजयगाथा। 26th 2000 नोबेल पुरस्कारेण विभूषिता भविष्यति कनाडा देशस्य प्रख्याता कवयित्री। भारतीय चलचित्र जगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः 75 वयसी दिवंगतः। अपि च आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य छलनीतिः निरस्ता। आतंकी संरक्षणं छद्मवेषेण गोपयितुं न शक्यते इति भारतस्य स्पष्टः संदेशः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः यशोभूमि सभागारे भारत मोबाइल कांग्रेस इति महोत्सवस्य 10th संस्करणम् उद्घाटयन् प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न्यगादीत् यत् एषः मञ्चः देशस्य दूरसंचार क्षेत्रे अंकीय संपर्क संवर्धने च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। श्रीमोदी सप्रश्रयं प्रावोचत् यत् 5G सेवा अधुना देशस्य सर्वेषु जनपदेषु प्रसारिता अस्ति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् प्रशासनं सम्प्रति 25 कोटि छात्रान् विभिन्नाङ्कीय शिक्षा मञ्चैः सह संयोजयितुं द्रुतगत्या कार्यं विदधाति।
1: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् देशे कृत्रिम बुद्धेः AI इत्यस्य नियंत्रणाय आगामी

0: असामयिक निधने राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव च गभीरं दुःखं प्रकटितवन्तः। संयुक्त राष्ट्र महासभायां भारतेन आतंकवाद विषये पाकिस्तानस्य कपट नीति तीव्रतया आक्षिप्ता। भारतेन प्रतिपादितं यत् जैश ए मोहम्मद इत्यादंकी संघटनस्य प्रमुखस्य मसूद अजहरस्य विषये सूचनायै पुरस्कार घोषणां कृत्वा इस्लामाबाद प्रशासनं स्वस्य आतंकवाद समर्थनं आच्छादयितुं प्रयतते। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् विश्व समुदायेन 9/11, 26/11 अथ च पहलगाम आक्रमणानां संहारः नैव विस्मृतः। संयुक्तराष्ट्रमहासभायां स्वस्य प्रत्युत्तराधिकारस्य प्रयोगं कुर्वन् भारतस्य प्रथमसचिवः रघुपुरी अवोचत् यत् केवलं घोषणाभिः आतंकवादः पराजेतुं नैव शक्यः। सः आतंकवादस्य दुष्कर्मकारिणां वित्तपोषकाणां अथ आश्रयदातॄणां विरुद्धं कठोरकार्याचरणाय आह्वानं विहितवान् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मितावाहिनी संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता आपण ऐकणार आहोत कार्यक्रम कामगार सभा।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: संस्कृतीस आपल्या नवनव नित देणारी
1: बहुजन हिताय
0: बहुजन सुखाय
1: बहुजन हिताय
0: बहुजन सुखाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to rupees 10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी

0: नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
2: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
4: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
5: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
3: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
7: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में लगभग सभी ब्लॉक्स में 11 स्टेट्स में जोश की टीम को यह टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the News at 9.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर नीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना, बचपन में शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बचपन ही वो समय होता है जहां पर यदि किसी बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो उसकी शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं बल्कि हर एक बच्चे को भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों का संतुलन मिलना जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा और स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक होती है। तो पोषण माह जो हम मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस माध्यम से देश भर के लोगों तक पोषण को लेकर के किस तरह का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है?
2: धन्यवाद, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी में जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर से बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की है, तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
2: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवार जनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। सो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है?
2: ये बहुत ही अहम मुद्दा है न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत। हम पहले 1000 दिनों महीनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास की हैं, इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सभी काम चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है। और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष हैं सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में, उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा जो। तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है का जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण हैं जैसे कि स्टंटिंग जिसमें जिसे हम नाटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है, तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर, और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए और हमारे लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम जैसे कहते हैं रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है?
2: श्री अन्न जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इनटेक बढ़ गया है। मगर जो मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती हैं, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं अगर हम देखेंगे तो, हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं, उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर नीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात है या फिर छोटी बच्चियों की बात हो या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए सही खानपान की क्या भूमिका है और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहां पर तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग या कम से कम बच्चियां या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों?
2: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए एनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी जिसे कहते हैं हम आमाशा में और या हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो 2 पार्ट में बनता है, एक उसका पार्ट है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है, मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन सी, काफी विटामिन का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं कम से कम उसको 4:1, 4 हिस्से अनाज में 1 हिस्सा दालों का या नट्स का जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए उसको इंक्लूड करना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण

0: मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड, उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। और
1: जी
0: उसके साथ विटामिन सी वाली चीजें, अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम दालों को अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स की एज में है, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टेबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में 2 बार खाना होता है। तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते हो शायद
1: जी
0: उसके कॉन्सिक्वेंसेस, गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है। तो गोली का भी अपना महत्व है, और साथ में एक संपूर्ण आहार
1: जी
0: इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें, जिससे उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
1: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना ना कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है। परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि सभी लोग मिलजुल करके इन समस्याओं से उबरने के लिए, हमारे बच्चों को उनसे उबारने के लिए प्रयास करने में और आगे आए?
0: हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, खाने की
1: जी
0: बहुत रिचनेस भी है, बहुत चीजें अवेलेबल हैं, और हम कश्मीर में रहते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाने ऐसे देश प्रदेशों में अवेलेबल हैं। और ये एक बहुत पर्सनल मैटर भी है कि हम जो खाएं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सभी परिवार और परिवार के जो बड़े हैं और मुखिया हैं, वो खाना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें, और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले और सारे विटामिन और मिनरल मिले। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको अगर हम समझें तो हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें, और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों, जिसमें से बाकी आधे का भी एक तिहाई अनाज हो सकता है, मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध, और दूध से बनी चीजें ये लेनी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना, क्योंकि हम देख सकते हैं। और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में इस तरह का खाना बन रहा है, बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और शुगर
1: जी
0: युक्त, जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का, और बहुत उसका उनका हमें कम करके, बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डाइटरी प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें, खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें, और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है
1: जी
0: और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है, जो कि बिल्कुल
1: जी
0: संभव है।
1: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है, जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: आताच आपण रेत का वृंदावन हे नभोनाट्य ऐकलं. लेखिका होत्या आशा पूर्णादेवी, कलाकार राहुल सोलापूरकर, राजस साठे आणि श्रीदेवी घाटे, सादरकर्त्या अरुणा भिडे.
1: नभोनाट्याचा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. रात्रीचे 11 वाजत आहेत. 11 वाजता हिंदी समाचार आणि 11:05 इंग्रजी समाचार दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है. नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है.
3: The council recommended removing arrest powers under GST.
4: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है. परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है. इसके अंतर्गत

0: 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और अनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री

0: मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंची को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुन मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
2: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Ms. Sitharaman said